0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളിൽ ഇനി കേൾക്കാം ജാനേമൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം.

ഗാനകേളി. PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: സുവർണ മലരുകളാണ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേൾക്കാം പൗരുഷം എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി യേശുദാസും എസ് ജാനകിയും ചേർന്നാലപിച്ച ഗാനം. വെള്ളനാട് നാരായണന്റെ വരികൾ, എ ടി ഉമ്മറിന്റെ സംഗീതം.

0: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ഇനി കേൾക്കാം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, ദീപക് ദേവ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഉദിത് നാരായണനും സുജാതയും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഗാനം ചിത്രം സ്പീഡ്.

0: രഞ്ജിനി. ഇനി നാളെ രാവിലെ 5:48 വരെ FM Gold ഡൽഹി പരിപാടികൾ തുടർന്ന് കേൾക്കാം. എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है. इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं. दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई. भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं. नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है. नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं.
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर. पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर

0: टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित संकटों का सामना करने में सक्षम विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में 3 नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती है। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और हेडलाइंस के साथ में है राजेश लेख।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1.5%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1,100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,700। Prime Minister Narendra Modi condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year. And UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक का उछाल, सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की बढ़त, निफ्टी 22,700 सौ पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परस्पर संबद्धता के दुरुपयोग की निंदा की, भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर यूपीआई एमडीआर दीपावली के बाद लागू होगा।

0: बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22722 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 1% से ज्यादा के लाभ में रहा, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली तेजी आई।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक equity indices ended over 1.5% higher today. The Sensex surged 1,109 points to close at 73,034. The Nifty soared 359 points to settle at 22,722. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed over 1%, while the small-cap 100 index eked out a marginal gain of 0.1%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों में आज बढ़त देखी गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एचसीएल टेक में 8.3% का उछाल आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6.6% ऊपर आ गया और टेक महिंद्रा में 4.9% की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में 0.9% की गिरावट आई और मारुति तथा एटर्नल में 0.6% की सुस्ती देखी गई।
1: इन द सेक्टरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT surged over 5%, IT climbed 4.9%, and realty advanced 2.5%. In contrast, hospitals and healthcare dropped 0.2% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,415 companies advanced, 1,957 declined and 219 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर एस पी शर्मा, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने बाजार में उछाल देखा, तो इसको हम किन परिणामों की वजह मान सकते हैं? खासतौर पे इससे विदेशी निवेशकों का कोई एक नया टर्न माने, या फिर वैश्विक परिस्थितियों पर का जो असर है वो हम पर ज्यादा दिख रहा है, या कुछ अन्य कारण है इसके?
2: देखिए, इसके कई कारण हैं जो सभी कारणों ने मिलकर मार्केट को एक अच्छा सर्ज दिया, एक अच्छा उछाल दिया। सबसे पहले तो जो एक वैल्यू बाइंग होती है, जो मार्केट में हमने पिछले काफी दिनों में डिसेलरेशन देखी कि मार्केट ऐसे स्तर पे आ गए जहां पे एक वैल्यू स्टॉक्स बनते हैं, जो हम आने वाले टाइम में जिनमें हम एक मुनाफा देख सकते हैं। उस लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर है वो आकर्षित होता है कि हम मार्केट में एंटर करें। और दूसरा, जो रोबस्ट अर्निंग्स रही आईटी सेक्टर की, आईटी कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी एक मेजर सपोर्ट मिली है। और तीसरा, कुछ ऐसे कारण है कि जो कैपिटल गेन से कुछ रिलीफ हो सकता है मिले इन्वेस्टर को, एक बहुत वो भी एक कारण है। और चौथे पे जो रुपये के अप्रिशिएट हुआ, रुपये में एक एकदम से रिबाउंड करना 50 basis points एक बहुत बड़ी रिलीफ है रुपये के लिए, वो काफी दिनों से डिसेलरेशन हम देख रहे थे। तो कुल मिला के एक सेंटीमेंट, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, तो उससे चौतरफा जो एक रिकवरी के मूड में मार्केट आई और मार्केट ने सुबह मार्केट खुलते ही काफी जबरदस्त रिबाउंड दिखाया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट में एक ऐसी जो एक नेगेटिव माहौल था। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ के ऊपर काफी सुदृढ़ता जताई है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जताया है, इंक्रीज किया है ग्रोथ को, तो ये भी साथ में एक फैक्टर जो है सपोर्टिव फैक्टर रहा है।
0: बड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक ही ट्रैक में हमें चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि बीते दिनों में यह हो रहा था कि जिस ट्रैक पर लार्ज कैप जा रहे थे उस पर शायद स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं पहुंच पा रहे थे, आज सभी एक ही ट्रैक पर चलते दिखाई दिए। तो ये घरेलू निवेशकों का इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है ज्यादा, या इस पर भी वही सारे कारण लागू होते हैं जो आपने बताए?
2: देखिए, इसके ऊपर वही कारण है जो हमने डिस्कस किए हैं कि जब चौतरफा रैली आती है तो सभी में, चाहे वो लार्ज कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स हों, सभी एक ही दिशा में फिर हमें दौड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एक जो एक तो आईएमएफ ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, भले ही एक कल के जो नंबर्स थे, कल

0: इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो
1: जी
0: फेवरेबल नहीं था और मार्केट्स में कुछ काफी हलचल देखी गई, मतलब करेक्शन थी तो, लेकिन उतना ही आज रिबाउंड बहुत स्ट्रांग था
1: जी
0: जो ये फैक्टर सपोर्टिव फैक्टर बने। मतलब कुल मिला के जो अगर हम देखें इसको कंपोजिट में तो पॉजिटिव्स ज्यादा है और नेगेटिव्स थोड़े रह गए
1: You
0: पीछे।
1: mentioned about yesterday's decline primarily because of the global risk of sentiment. Have those pressures eased or paused for some time? What should we be expecting? Yesterday was pretty low. Today we are on a high terrain. So what should now in the coming days we should expect?
0: आई डोंट थिंक दोज प्रेशर आर सबसाइड्स और ईज्ड, बट टूडेज सेंटिमेंट इज हायर देन दोज नेगेटिव सेंटिमेंट्स। सो द टूडेज डेवलपमेंट्स आर डोमिनेटिंग दोज फ्यू नेगेटिव हेडविंड्स विच आर हैपनिंग एट द ग्लोबल लेवल। बट द राइज ऑफ रूपी एंड द रोबस्ट आईटी अर्निंग्स एंड आईएमएफ कॉन्फिडेंस ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड सम एक्सपेक्टेशंस फॉर द टैक्स रिलीफ, ऑल दीज फैक्टर्स वर हायर और सपोर्टिव और लार्जली सपोर्टिव एज कंपेयर्ड विद दी सम लैगर्ड्स ऑफ
1: Okay.
0: लाइक द इन्फ्लेशन एंड
1: So,
0: ग्लोबल
1: Dr. Sharma,
0: अनसर्टेनिटीज।
1: does this indicate that the market believes that inflation and interest rate concerns are becoming less severe?
0: बिकॉज दीज आर टेम्परेरी, एक्चुअली दीज आर द रिपरकशंस और द रिजल्ट ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। दैट्स वाई क्रूड ऑयल प्राइसेज आर गोइंग अप, बिकॉज द ग्लोबल ग्रोथ इज डिसेलिरेटिंग, डिमांड इज नॉट दैट मच हाई एट द ग्लोबल लेवल, बट स्टिल क्रूड ऑयल प्राइसेज इन द हायर साइड बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया और द सप्लाई साइड कंसर्न्स। सो दैट्स वाई द इंटरेस्ट रेट आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेज एंड द इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक। सो दीज फैक्टर्स आर टेम्प्रेरी, एज एंड वेन देर इज सम पीस एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन ईरान एंड यूएस, देन द क्रूड प्राइसेस विल फॉल ड्रेस्टिकली एंड द इन्फ्लेशन विल ऑल्सो कम इन द रियलिस्टिक जोन एंड एंड द इंटरेस्ट ऑल्सो विल बिकम रेशनल। सो देर विल नॉट बी एनी इंक्रीज इफ द प्राइसेज आर कमिंग डाउन, द
1: You
0: इन्फ्लेशन बिकम
1: mentioned
0: स्टेबल
1: about
0: वंस
1: the
0: अगेन।
1: you mentioned about the IT led the market today with nearly a 5% gain. What is driving the renewed interest in technology stocks?
0: बिकॉज इंडियाज कंपेटिटिव एडवांटेज इन आई टी सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग स्टिल एग्जिस्टिंग एट द ग्लोबल लेवल, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग और कंपेटिटिव इन दी विद द ग्लोबल प्लेयर्स, एंड दैट्स वाई आवर कंपनीज आर गेनिंग मोर। दो देयर आर हेडविंड्स, बट आवर आई टी सेक्टर इज वेरी रेजिलियंट सेक्टर एट द ग्लोबल लेवल एंड शोइंग द गुड रिजल्ट एंड नंबर्स।
1: So today, FMCG and auto also participated in the rally. How important will the festive season demand be for these sectors in the coming weeks?
0: Yes, IT, as IT is a major driver, IT stocks when are going up, and that creates an overall growth trajectory of the economy and demand also happening, because the IT earnings also support many other sectors like the real estate sector and the FMCG, because demand is increased in the economy because of the earnings of the IT players or the IT employees also. So that's why I believe this rally becomes more strong when the IT gung-ho happens in the economy.
2: एसपी, थोड़ा सा अगर तुलना करें पिछले महीने की और इस महीने की, तो हमने देखा पिछले महीने गिरावट का एक बड़ा रुख नजर आया था, लेकिन अक्टूबर में अभी तक मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। हालांकि वैश्विक परिस्थितियां तमाम हमें अगर ओवरऑल देखते हैं तो उसी तरह से नजर आ रही हैं। मैं आपसे गहराई से पूछना चाहता हूं, इसमें DIS की क्या भूमिका है?
0: देखिए, इसमें DIIs की बहुत स्ट्रांग भूमिका है, जैसे बिकॉज FII तो आपने देखा कि बहुत ही वॉलेटाइल
1: जी, बहुत
0: रहते
1: निकासी
0: हैं,
1: हो
0: वो
1: रही
0: आज
1: है।
0: इधर हैं तो कल कहीं और दिखेंगे तो, लेकिन DIIs ने मार्केट को जो सपोर्ट किया, DIIs का जो कॉन्फिडेंस है, DIIs का जो इकोनॉमी के ऊपर एक एक जो रवैया
1: भरोसा
0: भरोसा जिसको हम कहते हैं, उसी से रिटेलर का भरोसा भी बनता है। तो ये दोनों ऐसी सेगमेंट्स हैं, रिटेलर्स का तो ट्रांजेक्शन काफी हाई है
1: जी
0: और DIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी हाई है, तो दोनों ही काफी अच्छा सपोर्ट जो है मार्केट को देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पीछे हमने देखा कुछ महीने पहले जो डिसेलरेशन का एक मोड था, जो अब फिर वो डिसेलरेशन डीप हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर उसके बाद करेक्शन आई, फिर रिकवरी हुई, तो ऐसा दौर कई बार चला।

0: तो अभी का ये जो दौर है, अभी मार्केट एक ऐसे स्तर पे आ गई है जहां पे मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, मार्केट की में एक वैल्यू बाइंग आती है। जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में हमें 2-3 साल का लोअर स्तर मिल रहा है तो हमें इसमें एंटर कर जाना चाहिए, जबकि कारण कुछ और है। कारण हमारे ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ खामी है या फिर हमारी कंपनीज के नतीजे गलत हैं या फिर वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। कारण है इसके जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, जो एक हेडविंड्स हैं, जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है पिछले काफ़ी महीनों से, जो एक एस्केलेशन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो ट्रांसमिट हो रही है इन्फ्लेशन में, पहले WPI में, CPI में। तो कारण इसके ग्लोबल है, कारण इसके हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल नहीं है। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखिए, आप IIP के नंबर्स देखिए, आप कोर इंफ्रा के नंबर कुछ भी आप देखिए, तो एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव।
1: अभी जिस तरह से IMF ने आंकड़े, मतलब जो ये बात कही कि GDP हमारी 7% की बढ़ोतरी की बात की, ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा?
0: जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी लार्ज इकोनॉमी नहीं है जो 7% पे ग्रो कर रही हो। आप देखिए चाइना का ग्रोथ जो है IMF ने 4.5% बताया है, मच बिलो अगर आप पिछले 5 वर्षों का डेटा देखेंगे 21-22 से लेके 25-26 तक का, तो एवरेज ग्रोथ जो इंडिया का बनता है वो 7.5% से ऊपर है। जो उन्हीं कंट्री से, उन्हीं इकोनॉमी से, चाइना से, USA से, कहीं कहीं मतलब डबल ट्रिपल है। आप ग्लोबल ग्रोथ को देखिए 3.1%, उससे डबल रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं
1: जी।
0: तो भरोसा बनना तो लाजमी है, जो FIIs का भरोसा बनना या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी भारत की इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनका तो कॉन्फिडेंस बनना स्वाभाविक है। जब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो IMF इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट 7%, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द पीपल।
2: Moving on, Prime Minister Narendra Modi today said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Modi said that India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said India's GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India's foreign exchange reserves exceed $700 billion and the banking system is in its strongest position in many decades.
3: साथियों 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं।
2: The Prime Minister also positioned India as a dependable ally, offering a radically different cooperative approach to global relations. Mr. Modi said that India does not grow at anyone's cost. He said that India grows with the world and for the world. Apart from that, Dr. Sharma, what the Prime Minister mentioned was also India's reforms. They continue to move India ahead at a high speed. What do you have to say about that? And second thing is about India being the home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world.
0: जी बिल्कुल लेख साहब, दिस इज आई बिलीव अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड दैट इंडियाज सपोर्ट सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, रिफॉर्म्स आर प्रोग्रेसिंग एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। सो आई वुड से देर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ विच आर सपोर्टिंग द ग्रोथ। Firstly, the stable policy environment, which we call the reforms express. Reforms are happening each day. One reforms is implemented, then the second also comes to support the first. So this chain is continue since the last many years, particularly from the pandemic years when we supported the economy with many reforms. Reforms for the farmers, reforms for the MSMEs, reforms for the NBFCs, reforms for the citizens, laborers. So these reforms are progressing.

0: And providing a great support to the economy. So this is the first pillar. And second is the trajectory of the middle class. Middle class is growing significantly as 25 crore people are pulled from poverty to the middle class, lower middle class, or more lower middle class is now entering.
1: So the consumption story is quite
0: class.
1: Strong.
0: Yes, consumption story is becoming more and more robust and strong to support this growth trajectory, which is happening 7.8% or more than 7% during the last many years. And third is the export competitiveness. We are becoming more and more strong at the global level. Our competitiveness is increasing. We are making new numbers in our exports every year. Last year we posted $863 billion. So now current year we have a target of $1 trillion. So this is again a strong pillar of the economic growth trajectory. And fourth is the ease of doing business, which is happening for the businesses to expand their production possibility frontiers. Reforms are happening, compliances are becoming simple, GST is now becoming simple. So these four pillars are becoming a strong support for the overall economic growth trajectory of the country.
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ी हुई घरेलू मांग और बेहतर सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक बढ़ोतरी को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण इन अनुमानों में सुधार किया गया है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया गया था। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा तथा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। एसपी, कई सारी बातें इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ी है, एक आम व्यक्ति के नजरिए से अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो आईएमएफ को ऐसा क्या नजर आया भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी वजह से आईएमएफ ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत की घरेलू उत्पादन वृद्धि दर इतनी होगी?
0: देखिए, आईएमएफ के जो ऑब्जर्वेशन है, खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले चार पिलर्स बताए हैं, तो कंजम्पशन एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए, और सेकेंड जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स ने एक बहुत ही बड़ी हैंड होल्डिंग हमारी ग्रोथ को,
2: कारोबार करने में आसानी
0: होना, तभी तो हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे एमएसएमईज ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो हमारे सेक्टोरल डेवलपमेंट्स हैं, लाइक द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या फिर और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है, लगभग कोई 10% के आसपास का अभी हमने जो फर्स्ट क्वार्टर में देखा, तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 9% के भी ऊपर है, और पिछले साल भी 9.9% था। तो कुल मिला के जो ये फैक्टर्स हैं, ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और खास करके जो चैलेंजेस, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए चैलेंज, उनके लिए फिस्कल चैलेंज एक बहुत बड़ी एक समस्या है, और एक आने वाले टाइम में उनको एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है, इन्फ्लेशन उनके कई, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज स्टिकी एट द हायर लेवल, लेकिन ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है और डेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी, और चाइना में ग्रोथ जो है 4.5% पे आ गई है। तो कुल मिला के जो भारत की लीडरशिप है, जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो असल में ही सराहनीय है कि हम इतने हेडविंड्स के बावजूद भी हम इस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं।
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। MDR के संबंध में अगली सूचना समय आने पर अलग से दी जाएगी। और इस बीच सभी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ निशुल्क यूपीआई लेनदेन करते रहेंगे। MDR शुल्क अगले आदेश के बाद केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक और व्यापारी के बीच किसी भी लेनदेन पर लागू होगा। आंकड़ों के अनुसार लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई QR कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भी पहले की तरह लेनदेन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। एसपी, इस तरह की खबर आना हमारे पास कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ये दीपावली के बाद लागू किया जाएगा, हालांकि पहले से ही क्लियर है कि जो व्यक्ति से व्यापारी के बीच में होना 2000 रुपए से अधिक का लेन देन उस पर ही होगा।

0: जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो डिमांड है काफ़ी हाई रहती है, तो इसमें क्योंकि एक नई प्रणाली सामने आ रही है, तो ये डिसीजन अच्छा है कि जो कोई नई चीज़ है उसको हम एक नॉर्मल जब सिनेरियो होगा उसमें इम्प्लीमेंट करें तो उसको समझने में लोगों को आसानी रहेगी। अब क्योंकि जो फेस्टिव डिमांड में सबसे ज़्यादा यही एक 3-4 महीने होते हैं जहाँ पे जो शुरू होती है रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक बहुत ही एक के बाद एक त्यौहार आते हैं, तो क्योंकि ये एक नई प्रणाली है तो इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है जिसमें कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा।
1: एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.5% नीचे आ गया। जापान का निक्केई 225 1.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ऐसे में कुछ देर पहले आईटी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एशियाई बाजार जो कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वहां इस तरह का माहौल हमें देखने को नहीं मिला। जहां पर पॉजिटिव रुख देखते हैं हम, यहां नेगेटिव रुख देखने को मिला।
0: देखिए, उसमें मैंने जैसे शुरू में बताया था कि काफ़ी फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मार्केट्स ने रिबाउंड किया है आईटी स्टॉक के रोबस्टनेस के ऊपर, और सेकंड जो फैक्टर जो था कि रुपी हमारा एप्रिशिएट हुआ 50 पैसे के साथ, और तीसरा जो था एक कैपिटल गेन्स के ऊपर एक आशा जो बनी हुई है कि उसमें शायद हमें कुछ राहत मिलेगी, और ये सभी फैक्टर्स ने मिलके ही हमें सपोर्ट किया है हमारे मार्केट को, तो उसी वजह से। और हमारे फिर अर्निंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
2: Indian Railways has recorded a continued growth in freight and passenger segments during the first 6 months of the financial year 2026-27. The Railways Ministry informed that Indian Railways registered 6.14% growth in freight loading, with 135 million tons loaded in September as compared to over 127 million tons during the same month last year. It said that several major commodity segments also recorded strong growth during the month. The ministry said that the food grain loading grew by 25%, clinker by 20%, domestic container by 10%, coal by 9%, balance other goods by 8.2%, mineral oil by 6%, finished steel by 5.5% and iron ore by 5.2%. Dr. Sharma, how significant is this continued growth in freight that I just read about, and how does it indicate about the growing consumption pattern?
0: Yes, Mr. Lake, this is very important aspect as freight increases with a good number. That indicates the consumption trajectory is very strong, and our business and or the exports are also very strong. So this is a very positive indicator for the overall consumption trajectory and our logistics and our competitiveness in the global market. So I believe the coming days or the coming months will be again very robust for the Indian economy and supporting the economy and supporting the growth trajectory at the larger level.
2: Okay. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.8% lower at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2% lower at $91.84 per barrel at the time of writing this report. Dr. Sharma, is this decline in oil good enough for us in India?
0: I think crude prices are very volatile. We can't trust on this small decline. When there is some talk, positive talk between US and Iran, and prices are decelerating significantly, falling drastically at the normal levels, then we can say that yes, crude prices are now benefiting the growth or the economy.
2: So which domestic themes, Dr. Sharma, do you think will define the next phase of Indian market? Manufacturing, capex, financialization, digital economy, or consumption?
0: I think, as I mentioned, consumption is a strong support for the economy. That is at the forefront of the overall growth trajectory. If the consumption is not there, then the economy can't grow in a significant way. So this is the major factor. And second, to speed the economic trajectory, the digitalization is very important. That is, again, India is a leader in the digital economy at the global level. And thirdly, the earnings of the businesses are also okay. Very important.
1: Yeah. Dr. Sharma, is karyakram mein shamil hone ke liye

0: इससे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी शुक्रिया
2: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस गेन ओवर 1.5% सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1100 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स अबव 22700 Prime Minister condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year and UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून इन किया है गीत मेरे मनमीत और आज के गीत मेरे मनमीत में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। 11:41 हो चुके हैं तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज के साथ। संगीत पथ गीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग और इस गीत के बाद अगला गीत जो आप सुनेंगे वो होगा माचिस फिल्म से विशाल भारद्वाज का, इसमें संगीत है और जो बोल है गीत के वो गुलजार ने लिखे हैं, आवाज है लता मंगेशकर की। बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद ले आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज गीत मेरे मनमीत में।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। जो गीत अब आप सुनेंगे वो है किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गीत होगा और इसके जो संगीत है वो संगीतबद्ध किया है पप्पी लहरी साहब ने। और इस गीत के साथ ही आप अर्पना को देंगे इजाजत। गीत के बाद FM गोल्ड पर होंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।
1: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
4: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
5: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक गणराज्य रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नई दिल्ली में चेक

0: राज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावेलचेक से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ संयुक्त विनिर्माण और औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थ की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास उच्च न्यायालय में दो न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई। धर्मलिंगम लिंगवेश्वरन और बालाथुंडयथुम कार्तिकेयन को मद्रास उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश के बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayan Chaudhary today. The first BIMSTEC Home Ministers meeting concluded in New Delhi with adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their determination to prevent, combat and eliminate terrorism and violent extremism conducive to terrorism in a comprehensive and sustained manner in accordance with the UN Charter and international law. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government is open to hearing suggestions on the removal of long-term capital gains tax during consultations for the upcoming union budget. Ms. Sitharaman said this while speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi yesterday. She added that the government will continue to follow a disciplined fiscal approach while protecting spending on key areas such as welfare, education and healthcare. She said the Reserve Bank of India may take further measures to curb rupee volatility.
2: Rupee has reached a low and RBI is making a lot of efforts through their regulatory powers to make sure that rupee stays stable. They are not trying to fix the rupee, they are trying to stop the volatility. And for that there is a lot of effort from RBI's side. The latest one was also a set of measures taken 2 days ago, and as a result you saw the rupee sort of holding on and probably appreciating in value 1% or something. So these efforts from RBI, I understand, will continue.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar stressed that peace and stability along the

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

नूरी फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात का अपना ही एक अंदाज है, अपनी ही एक रवानी, और जब इस रात के सफर में साथ जुड़ जाते हैं पुराने फिल्मी गीत तो हर लम्हा कुछ खास हो जाता है। कभी कोई धुन पुरानी यादों के दरवाजे खोलती है तो कभी कोई नगमा दिल को सुकून दे जाता है। तो आइए चांदनी रात और सुरीली धुनों के साथ शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सा सफर।

कभी किसी का आना दिल में ऐसी हलचल मचा देता है कि लगता है जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गए हों। एक अनजानी सी खुशी दिल में उतनी मीठी सी उमंग और प्यार का मदहोश कर देने वाला एहसास। सवेरे वाली गाड़ी फिल्म का गाना आपने सुना, सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

खूबसूरत कैफियत है इश्क की, जहां दिल की धड़कनों में भी किसी अपने की आहट सुनाई देती है। कभी लगता है ये धड़कन हमारी है, तो कभी एहसास होता है कि इसमें आवाज किसी और के दिल की है। इसी उलझन, इसी मोहब्बत और इसी दिलकश एहसास को इस खूबसूरत गीत ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। गुलामी फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ राखी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।

प्यार में किए गए वादे और खाई गई कस्में अक्सर दिल को एक मीठी उलझन में डाल देते हैं। क्या वादा है, क्या कसम है और इस रिश्ते का नाम क्या है? ये सवाल भले ही समझ ना आए लेकिन दिल की धड़कन सब कुछ बयान कर देती है। टैक्सी चोर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया पप्पी लाहिड़ी ने।

कहते हैं प्यार जब दिल पर दस्तक देता है तो दुनिया का हर रंग कुछ और ही खूबसूरत लगने लगता है। धड़कनों में एक नई रवानी, आंखों में मीठे मीठे सपने और होठों पर बस एक ही नाम रहता है। इश्क के इसी शोख, चंचल और मदहोश कर देने वाले एहसास को अभी आपने सुना। फिल्म कुदरत के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

कभी कभी मन उदासियों से घिरकर किसी ऐसी जगह जाने को करता है जहां दिल को सुकून मिले और जिंदगी कुछ नई सी लगे, जहां न बीते कल की परछाइयां हों न अधूरे ख्वाबों का बोझ। एक ऐसी मंजिल की तलाश जहां मन को अपना ठिकाना मिल सके। मान अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना येशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

अंधा कानून फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने पर 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में ज्यादातर नाबालिग हैं जो भोज में शामिल होने जाने जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर दूतावास के नए एआई अवतार देवी की शुरुआत की है। इसके जरिए लोगों को

भारतीय संस्कृति, पर्यटन, छात्रवृत्ति, व्यापार, निवेश के अवसरों और वाणिज्य दूतावास से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एआई देवी भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी से जुड़ी खबरें और जानकारियां भी साझा करेगी। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को जर्मनी की जवान ली ने 13-21, 25-23, 21-19 से हराया। वहीं तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदायरा को 21-17, 16-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में उनका मुकाबला जवान ली से होगा। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहानी मैं हूं राखी आपके साथ।

बीते हुए दिन भी कितने अपने होते हैं। उन दिनों की छोटी छोटी खुशियां, दोस्तों की महफिलें, अपनों का साथ और वो बेफिक्रे से पल, जिन्हें जीते वक्त कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक दिन यही हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाएंगे। दूर गगन की छाओं में फिल्म का ये गाना आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया किशोर कुमार ने।

पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

कुछ शरारत, कुछ प्यार और जमाने की नजरों से बचने की अदा। जब दिल किसी का हो जाए तो छोटी सी छेड़छाड़ भी इश्क का खूबसूरत इजहार बन जाती है। गंगा की लहरें फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

मोहब्बत भरी मुलाकात हो मगर अंदाज जरा अनजाना हो, नजरों से इशारे हो और लबों पर अजनबी होने का बहाना, इश्क की यही अदा तो दिल को गुदगुदा जाती है। एक राज फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

0: फिर भी है कुछ कम,
1: बस तेरा इंतजार है।
0: देखने में भोले हो पर वो बड़े चंचल।
1: हाँ चल मैं क्या जी
0: अजब।

9211 फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

की आवाज फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। कहते हैं खूबसूरती जब हद से गुजर जाए तो चांद भी अपनी चमक पर शर्माने लगता है। आपकी सूरत का जादू ही कुछ ऐसा है कि नजरें ठहर जाती हैं और दिल बस आपको ही निहारता रह जाता है।

मोहब्बत करने वालों की भी अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश होती है। महबूब की नजर कभी उनसे हटे नहीं और दुनिया की प्रेम कहानी में उनका नाम भी दर्ज हो जाए। दीदार फिल्म का गाना आपने सुना, दुर्रानी और शमशाद बेगम की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद अली ने।

मोहब्बत में नाम भी कितने खास हो जाते हैं। कभी कोई दिलबर तो कभी कोई दीवाना कहलाता है, और जब दिल किसी पर आ जाए तो उसे पुकारने के लिए एक प्यारा सा नाम चाहिए। अब जरा आप भी अपने दिल की सुनिए और चुन लीजिए कोई ऐसा नाम जिसमें शरारत भी हो, प्यार भी और इजहारे मोहब्बत भी। शबनम फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में। जावेद अनवर ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा है कि सामने महबूब हो, उसकी नजरों में कशिश हो और हर अदा दिल पर दस्तक देने लगे तो होश भला कहाँ ठहरते हैं। आपने सुहागन फिल्म का गाना सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

0: किसी अपने का साथ हो तो मुश्किल राहें भी आसान लगने लगती हैं। दिल भी बस यही चाहता है कि कोई पास रहे, अपनी बातें सुने और हर पल को खूबसूरत बना दे। एक झलक फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में। SH बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।
1: एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के त-

0: कहो ना
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
2: बिन बादल बरसात फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 29 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंध पर पड़ेगा। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के समूह क्वाड के अधिकारियों ने साइबर खतरों से निपटने और उन्हें रोकने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सिंगापुर में आयोजित बैठक में उन्होंने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मजबूती बढ़ाने और देश की अपनी विकास राह चुनने की क्षमता को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों को निर्धारित कानूनी मानदंडों पर खरा उतरने की स्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति के 81वें सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए काउंसलर आर मिथली ने कहा कि ऐसे कृत्यों के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। ओडिशा सरकार ने सरकारी स्कूलों के करीब

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

कभी कभी एक ख्वाब आंखों में उतरता है तो उसके साथ उम्मीदों के कई नए सिलसिले जुड़ जाते हैं। फिर दूर तक नजर जाती है तो हर तरफ खुशियों और मोहब्बत के फूल खिले नजर आते हैं। सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

प्यार में कभी शिकायत भी कितनी प्यारी लगती है, दिल चुराने वाले से बस यही सवाल है। परदेसिया, ये सच है या सब कहते हैं? इसी मीठी सी शरारत, उलाहना और प्यार भरे अंदाज के साथ आपने ये गीत सुना फिल्म मिस्टर नटवरलाल का। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 21 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: शादी की बात जब घर में चलने लगे तो चाय की एक प्याली भी खास हो जाती है। दिल में नए सपने, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और मन में ढेरों सवाल। कुछ ऐसा ही मीठा सा माहौल है इस गीत में, जहां मम्मी ने चाय पर बुलाकर शायद दिल की बात कहने का इशारा कर दिया है। सौतन फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

कभी कभी प्यार जताने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। एक खामोशी भी दिल की सारी बातें कह जाती है। ना कोई इजहार हुआ, ना कोई वादा, मगर नजरों ही नजरों में कुछ ऐसा हुआ कि दिन में चांद खिल उठा और प्यार की बात बिन कहे सुने ही हो गई। जी हाँ, बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

कुछ रिश्ते सिर्फ प्यार नहीं होते बल्कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत जरूरत बन जाते हैं। जब किसी की चाहत दिल में इस तरह बस जाए कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगे, तो मोहब्बत का एहसास कुछ ऐसा ही होता है। यही गहराई है इस गीत में। कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना, कंचन, मनहर और आनंद की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

धर्मात्मा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं। कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पर आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने पर 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिवसीय स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आज से नई दिल्ली में भारतीय बिजली क्षेत्र को AI से सक्षम बनाने के विषय पर 2 दिन का विचार मंथन सम्मेलन आयोजित करेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी संधू और लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदायरा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में उनका मुकाबला जवोन ली से होगा। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबलों में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham.

रात के 3:11:30 हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत में दिल का शीशा होना सबसे खूबसूरत बात भी है और सबसे बड़ा इम्तिहान भी। शीशे की फितरत है पारदर्शिता, यानी सब कुछ साफ साफ दिखना, लेकिन जरा सी ठेस लगने पर वह चटक जाता है। और ऐसा ही मोहब्बत में भी होता है ना दोस्तों। ये रिश्ता भी बड़ा नाजुक होता है, बिल्कुल एक शीशे की तरह।

आशा भोसले, मनमोहन सिंह और किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म लावा से। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब दिल खुद ब खुद किसी के नाम हो जाता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वादे के। बस एक निगाह उठती है और रूह तक उतर जाती है, और जब ऐसा होता है तो होंठों पर एक ही बात आती है,

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आई मिलन की बेला से अभी आपने गीत सुना। तेरी एक मुस्कान पे दिल हार बैठे हम, तेरी एक मुस्कान पे दिल हार बैठे हम, तूने तो बस बात की थी और जानवार बैठे हम।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म खामोश निगाहें से ये गीत आपने अभी सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं सातवां आसमान फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, प्यार में थोड़ी सी नोक झोंक और एक दूसरे के पीछे चलने का जो आनंद आता है वो किसी और बात में कहां। जहां एक तरफ मनाने की जिद हो और दूसरी तरफ दिल हार जाने की रजा हो, यही सब प्यार में रंगीनी ला देता है। आइए सुनते हैं डैनी डेंजोंगपा और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म यादों की बारात से अभी आपने गीत सुना। जुबां पे बात आए तो कैसे आए, जुबां पे बात आए तो कैसे आए, ये दिल की बात है दिल ही जाने। नजरों से जो कह दी दास्तां हमने, वो अब कोई और क्या पहचाने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रूप तेरा मस्ताना से अभी आपने गीत सुना। जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई भी आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए हैं दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जंजीर से ये गीत आप सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या की क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 73 भारत विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 73 भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिवसीय स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आज से नई दिल्ली में भारतीय बिजली क्षेत्र को AI से सक्षम बनाने के विषय पर 2 दिन का विचार मंथन सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में AI के उपयोग से दक्षता, विश्वसनीयता, चुनौतियों से निपटने की क्षमता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों पर चर्चा करना और ठोस परिणाम तलाशना है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदारा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबलों में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. The first BIMSTEC Home Ministers' meeting concluded in New

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, कई बार हम पुरानी यादों को ताजा करते हैं और उनमें कुछ पल अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी। पर हमारे में एक ये आदत भी अच्छी है ना दोस्तों, कि हम भूलना जानते हैं, क्योंकि उन बुरे पलों को याद करके कई बार हम विचलित से हो जाते हैं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। पर अगर भूलना सीख गए तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दो झूठ से आपने ये गीत सुना। दोस्तों, इस दुनिया में कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों ने एक चेहरे पर कितने ही चेहरे लगा रखे हैं और कब गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे कुछ पता नहीं।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दाग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर जिंदगी में अच्छे से जीना है तो गम को छोड़ के खुशी और मस्ती से जीवन बिताओ, यही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा मंत्र है।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धूम नाम से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म से, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, अगर आप अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़े हैं तो रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही, पर हिम्मत रखकर आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। और यही बयां कर रहा है ये गीत, जो लिया है खुद्दार फिल्म से अमित कुमार की आवाज में।

बिल्कुल दोस्तों, आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, हमारी यही दुआ है। और आपके जो भी पल हैं वो भी हंसी खुशी बिताइए, क्योंकि जिंदगी के सफर में ना दोस्तों, जो पल चले जाते हैं वो फिर लौट कर नहीं आते, केवल उनकी यादें ही शेष रह जाती हैं। आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म इम्तिहान से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिमान से।

दोस्तों ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिन के भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की ये भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कल श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव गंगा नदी में पलट गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में अधिकतर नाबालिग हैं। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए

0: जा रहे थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हादसे में हुई जानहानि बेहद दुखद है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रूपये और प्रत्येक घायल को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार सभी तरह के आतंकवादों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के माध्यम से रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आज से नई दिल्ली में भारतीय बिजली क्षेत्र को एआई से सक्षम बनाने के विषय पर 2 दिन का विचार मंथन सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में एआई के उपयोग से दक्षता, विश्वसनीयता, चुनौतियों से निपटने की क्षमता और नए विचारों पर चर्चा करना तथा ठोस परिणाम तलाशना है। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों को निपटाने का विशेष अभियान चलाएगा। और खेलों में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह पक्की कर ली है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को जर्मनी की यावोन ली से हार का सामना करना पड़ा। वहीं तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदियाई को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। PM Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. The first BIMSTEC Home Ministers' meeting concluded in New Delhi with adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their determination to prevent, combat, and eliminate terrorism and violent extremism conducive to terrorism in a comprehensive and sustained manner, in accordance with the UN Charter and international law. In Bihar, 13 people died when a boat capsized in the Raghopur Diara area of Vaishali district last night. Vaishali district magistrate Varsha Singh told media persons that 13 people died while 6 were rescued after the boat capsized in the Ganga River in Raghopur. Most of the deceased are minors.

सुबह के 5:11 और 12 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, माँ के नवरात्रे चल रहे हैं और माँ जो सबके दुख हरती है, अपने बच्चों पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। समर्पण और त्याग की

मूरत है माँ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये माँ के भजन से जो लिया है फिल्म साहिबजादे से, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में।

दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग है। हर पल नई से नई मुश्किलें सामने खड़ी होती हैं और हमें उनका पूरी हिम्मत से सामना करना होता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म मेरी जंग से ये गीत।

दोस्तों, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको नेचर से प्रेम है तो आपको ये सब जरूर अच्छा लगता होगा, धरती, आकाश, पानी, आसमां, और साथ में ये प्यारा सा गीत भी आपको अच्छा लगेगा सुनने में, जो मैं सुनवाने जा रही हूं अभी अमित कुमार की आवाज में, फिल्म बालिका वधू से।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, बचपन फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।